तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी क्या पढ़िया क्या गुणिया क्या भेद पुराना सुनिया क्या पढ़िया क्या गुणिया क्या भेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जाओ सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सुगवारा क्या सोचा है बारं बारहाओ अंधियारे दीपक चाहिए

ना पतिजै ताओ क्या कीजै। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तौ मन मानिया। मन माने लोग ना पतिजै ना पतिजै ताओ क्या कीजै। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहिब जी दी साजीन वाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। आप जी अमृत वेले तो लैके सलाना मीरी पीरी नगर कीर्तन दे विच हाजरियां भर के सेवावां करके उपरंत नगर कीर्तन की समाप्ति तो बाद खुले पंडालां विच सजे दीवाना विच बहुत ही सत्कार योग सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हजूरी रागी सिंह भाई साहब भाई जगतार सिंह जी भाई साहब भाई संदीप सिंह जी भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़का जथियां दे वल्लों रब्बी बाणी दे कीर्तन आप संगत नूं सुना के निहाल कीते ने। समूही संगतां वल्लों जथियां दा धन्नवाद। सो साध संगत जी हुण सुख आसन की सेवा होवेगी। उस तो उपरंत दरबार हाल दे विच दीवान सजे हुए ने। आप संगतां ने उत्थे सजन की कृपालता करनी। जिन्नियां भी संगतां अमृत वेले तो लैके जां पिछले 16 जुलाई तो जो मीरी पीरी सलाना समागम आप संगतां दे सहयोग दे नाल कथा दरबार ढाडी दरबार कीर्तन दरबार ते 3 रोजा मिश्रत 31 राग दरबार सजे ने। आप संगतां ने भरवा हुंगारा भर के हाजरियां भर के सेवादार नाल सहयोग बख्शिश कीता है। आप समुचियां ही गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु जी कृपा करन जिन्हां भी संगतां ने तान मान तहन करके सेवावां कीतियां ने सारियां ही संगतां दीयां कीतियां सेवावां भेटावां किते भी गुरु के लंगरां विच सेवा कीती है दरबार हाल विच सेवा कीती है महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जानी जान ने महाराज सारियां दी सेवा लेखे लाउण प्रवान करन दरों करों गुरसिखी नामदान सेवा सिमरन दीयां दातां बख्शिश करके इस तरह परिवारां नूं गुरसिखी दी दात बख्शिश करके निहाल करन। सो हुण महाराज दी सोखा सिंह दी सेवा होवेगी। उपरंत साध संग जी जो उपर दरबार दे विच दीवान सजे हुए ने उत्थे आप जी ने सजन की कृपालता करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुग आद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुग आद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुग आद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद
ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ।

जीवन सफला हो जावे दर्शन करके दाता जीवन सफला हो जावे पूरन कर्म होण जे तकिए अखी नजारे पूरन कर्म होण जे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the most yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सौगात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

मैं बेनती करांगा वो धर्म स्थान नहीं जिथे काम कर रहे पर उन्होंने उस कर्म नू भी गुरु की सेवा जान के लिया। इत्थे महाराज कहिंदे सेवा कोई भी होवे हां संगत दे चरणा दी धूड़ बन जाई सेवा च हंकार नहीं दिखाना। फिर बेनती है सेवा च लेखे नहीं सची मुची बाणी कहिंदी सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। महाराज ने कहा पर एक थां ते गुरबाणी ने कहा नहीं सतगुरु की सेवा भी गवाच जांदी है। एक तो मत थोड़ी सेव गवाई है। दूजा शब्द महाराज जी ने वरत्या जेड़ा बंदा फिजिकल तौर ते दिन रात सेवा करदा ते 10 मिंट रोज निंदिया दे पावे फोन ते लावे पावे गल्लां च ला जाए जेड़ा निंदिया करदा उहदे 24 घंटे इंज उड़दे आ जिवें तीली ला के सच्ची गल सुके रूह नूं कोई फूक दिंदा है। सेवा सफल है पर महाराज जी दा शब्द कह पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी नेफल पई सब सेवा। महाराज कहिंदे सेवा ओ नूं पाएगी जे सब दे चरणा दी धूड़ बन जाए निर्माणता विच आ जाए। सेवा सात इस भाव सी संतां की होए छार। अगला वचन दीना नाथ दयाल देव। दीन तो शब्द दीना गरीबां नाथ दा अर्थ है स्वामी मालक। सीधे अर्थ करांगे दीना नाथ दा अर्थ है गरीबां दा जिदा कोई सहारा नहीं उन्हां दा नाथ उन्हां दा मालक। दयाल दयालु है। देव दा अर्थ है प्रकाश रूप है। दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण खार। सच एवे ओ पापिया दा पार उतारा करन वाला है ओ पापिया दा उधार करदा है। इस तोक विच गुरदेव ने प्रभु दे गुण दसे गरीबां दा मालक है दयालु है प्रकाश रूप है ते पापिया दे उधार करता है ते सतगुरु बचन करदे आ आद जुगादी रखदा। आद दा अर्थ शुरू तो ते जुगादी दा अर्थ जदो समा भी नहीं सी बनिया समय तो पहला भी पार ब्रह्म परमेश्वर रखदा आया है अपने भगतां नूं रखदा आया है अपने प्यारियां नूं जिन्हों असी रोज पढ़ने आ भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया जां असी करने आ हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हजूर ने फरमाया आद जुगादी रखदा कौन जी सच। चचे नूं औंकड़ लगी है एक वचन नाम नूं भी औंकड़ है करतार वाहगुरु जी दा नाम है कि ओ जो सच है जेड़ा सच अपने नाम विच वरतदा है। देखो सत नाम भी आउंदा ते सच नाम भी आउंदा। ते एक दिन मैं इत्थे करे शायद सवेर दी कि शाम दी कथा च कहा सी जिदा नाम होवेगा ना ओदे च नामी वरतदा नाम विच नामी वरतदा नूं सुणियो साडे च नहीं मेरा तुहाडा नाम है वजूद मुक जाना नाम फिर भी अजे बंदा कहिंदा है चलो रहिंदी दुनिया तक इहदा नाम रहेगा। ते मैं एक दिन कहा सी भी इह तां रहना भी किस सेंस विच रहेगा मन लो बंदा आया नाम रखिया मर गया ते बाद च भावे जिन्ना मर्जी बच्चे कही जान नाम नूं पर जिहदा नाम सी ओही मर गया नामी नहीं हैगा। जिहनूं मरन कहा आया गया मोया नौ ओहदा नाम मर गया पर इह जिहड़ा नामी है जिथे नाम वरतेगा उथे नामी हर हालत विच आएगा ही आएगा। मां अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे जय जय काज कीर्त सेवक की तहां तहां उठता वे। इथे महाराज कहिंदे ने भाई ओ आद जुगाद तो रखदा आया जेड़ा सच है जेड़ा नाम विच वरदा है करतार। ते महाराज कहिंदे आ कीमत कोई ना जाने ओदी कीमत कोई नहीं जान सकता। कीमत दा अर्थ ओ तां अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी है अमुल भंडार। ओदा अंत कि हर आप अमुल है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए। पर आ ये तरीका दस दिता ऐसा सतगुरु जे मिले तिस नूं सर सौंपिया विचों आप जाए। हजूर कहिंदे ने ओदी कोई कीमत नहीं जानदा ते किसे तरीके नाल

0: ऊंचा महल मकान में लग गया है, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत बड़ा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत बड़ा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कंदा संतां दी संगत दे आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी, मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होने दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नु दिते हुए ने, सीमित ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंची है, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंड जेर जो उतबजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करता है करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग जस जवारी स्वास्थ्य तिस

महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आरजा पड़िए।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संध्या करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मुख द्वार, जति सदा में जुगत न जान है।

0: bit of chaos.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

गुरु रूप साध संग जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हों का ऐसा कहना है कि मनुखा नू पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक पंज तरह के ही होंदे ने। ये किस्मा मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी किथे खड़े हैं। इन्ना पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनूं वो इस तरह बयान कर देना है। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चौला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरुदास जी कहिंदे ने कई जन्मा तो मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करता रहा है, चौला बदलता रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी है तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते अहंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरता शरीर, मरता है अहंकार नहीं मरता। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होती। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं आता। लोभ सदा जवान रहता है, अहंकार सदा जवान रहता है, विकार सदा जवान रहता है, वासना सदा जवान रहती है। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा आंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरुदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नू समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी, वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इनू कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है, इनू कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आउंदा, लोभ दा बंधन आउंदा, वासना दा बंधन आउंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नू बुढ़ा कर देंदी है, मन नू बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नू खत्म कर देंदी है, मन नू खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान हो गई। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा, रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं, रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, अहंकार छोटा है, जवान है, अहंकार जवान हो गया, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज अहंकार दी ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही है। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदिया लोभ बलवान होंदा, अहंकार बलवान होंदा, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, अहंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी अहंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਹੈ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੋਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਆਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ये लोभ करके नहीं आए, परोपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन दा एक बहुत छोटा जिया भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसू। बिरथा कहो कवन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो तन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है धर्म दी नहीं है, आसा पदार्थां दी है परमात्मा दी नहीं है, आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो तन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवां, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंगे, उन्हों का मत्था ही दसदा, अपनिया चिंतावां च ही गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो तन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन के, मानस जन्म अकारत खोवत। एना कीमती जन मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की, हरिदा जस गाते हरी हो जा। परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता, निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देण वास्ते ए परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जांदे ने, वरना इन्हां नूं आण दी लोड़ नहीं ते मुक्त होंदे ने। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकदे ने। रविदास कहिंदे ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त, जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसे मंडल च जा सकते ने, किते भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हां कोले तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, जिहनूं इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है, वह होंदा है, तन नहीं होंदा। एक तरीके की हवा होंदी है। ऐ तुसी कथा सुनदे पयो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनदे हो, दे नाल कोई पेट भर जाएगा, अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाया, किस वास्ते चलाया। कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। एक कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे
जे को भुनचे तिसका होयो उदार, कोई खावे ते सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा मन का एक छोटा जिहा भाग, किधरे पाठ दे चाहुंदा बाकी नहीं आता, मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुवारे आंदा बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। ते जे हुण भोजन दी बुरकी तन विच गई नहीं ते खून कित्थों बनेगी, मांस कित्थों बनेगी? गुरु दा शब्द मन विच गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी? बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा? शब्द मन तक नहीं जांदा, ना जाण दा एक कारण भोजन दी भुख तन नूं लगदी है, शब्द दी भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम दी भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वो मनुख जिन्हों नाम दी भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल का माना, कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्होंने उत्ते तन का अस्थूल तन का बंधन नहीं आता। इस अस्थूल तन की अपनी सीमा है, सूक्ष्म की सीमा नहीं, किधरे भी जा सकता है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां को लहौंदे, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने, परमात्मा दे जी रहे ने, परमात्मा दे विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा, किधरे किधरे। फिर इस तन विच आके जन्म ले लेंदे ने, वासना वस होके नहीं परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहो में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरां तो इलावा कुछ होर भी आउंदे ने, देवतियां दे पूतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी ये तन दा बंधन नहीं होवे आउंदा, जिथे चान जा सकदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहंदे ने जिथे रामायण दी कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहिंज ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो ते हनुमान मुकत नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकदे ने, भूत प्रेत भी भटकदे ने। इंज आखो जिवें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण दी कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सत्संग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील दी वाट होवे ते कोई 90 मील चले आए ते शरीर दा अंत हो गया, शरीर दी उम्र इतनी सी, 10 मील दी वाट ते रह गई, वो ते तय करनी है, ते उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वो हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है तिन धन जने दी मां आए सफल, क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल सिर्फ मन है तन नहीं है, मनुख कोल तन भी है मन भी है। आप सारे सियाने बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना। पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ए तन भी है मन भी है, मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी,
परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा ना भूत प्रेत नू ना देवते नू। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरे देह, देवते भी कहते ने देही मिले ते मुक्त होई है। दस मील दी जड़ी वाट रहिंदी है पूरी करिए, पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए। पहले चुनाव मां दा, क्योंकि मां दे घर विच उसने प्रवेश करना, मां बाप दी वासना, इस दी जन्म दी वासना, कि तिना दा संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब दा बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नू जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते। देवते नू जन्म देने वास्ते कोई खास मां, इसनों मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता। हर मां देवते नू जन्म नहीं दे सकती। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है, मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहने प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु दा नाम सुने अश्कबार हो जाए बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद की खातर रो रहा है, कोई कारोबार की खातर रो रहा है, कोई परिवार की खातर रो रहा है, कभी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर, कभी कदाई। प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भले दिन लहू सो घाव चले अरधंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर रणभूमि विच रोम रोम उसका जख्मी होवे पिठ फिर भी ना दिखा रहे, अणख उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए भूत जने जननी जन आओ सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया नो जन्म देन नाल की होना, धरती का बोझ ही बधाएंगे और की। कहन देना अजोकी औलाद, जद मैं सुनदा पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम नू, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की बिहार के नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईया ने, यह भी मैं जिक्रां। एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नूं वेख के मां नूं गाल कढ़ दे, मां नूं गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नूं जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस करा, गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना वसयो तिन मात कीजे हर बांजा तिन सुन्ये दे फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारां नूं जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है, अवतारां नूं जन्म देण वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से,
इति बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसे परम पुरुख नु उड़ीक लिए। खैर ये स्वतंत्र होंगे ने मुक्त रूहा, क्योंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है। इन आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए, पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इज कहले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतीला है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह लिया केवल मनुख है, एदे कोल तन भी है, एदे कोल मन भी है। इस तन दी बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे होरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखा ने देखने की दृष्टि है, किसी को नहीं आती विचारे को, जिन्हों असी नेत्रहीन अंधा कह दें, कोई गल दृष्टि साढ़े को है मनुखा नू वेखण दी, पर जिहदे को देवते नू देखने की दृष्टि आती है उन्हों कहने ने इहदे को दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा है जिथे रामायण की कथा होवे उथे हनुमान बैठा होंदा है, इह ते अतकथनी है, हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होणगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इहनू इतना वड्डा संत ते उहनू पूजण दी भी फिर की लोड़ है, नहीं है, वह एक मुक्त आत्मा, उन्हों विचकार लियाण दी लोड़ नहीं आउंदी, पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोकां च राम दी शरदा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करन वाले मनुख दे अंदर ते शरदा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान दे अंदर सी, इस तरह दे प्यार रखण वालियां दा किधरे शरीर दा अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकिया, तो ये देवते कहलांदे ने, भटकदे ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने, भटकदियां होईयां ये रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना, भरिया पिया है, खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहिंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च, पर ओ ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जलिया होया पवित्र ने, जन्म लै सकन उस तरह की मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसे मां की गोद दे राही और जगत विच नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन, ये फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक अपने अपने धार्मिक केंद्रां विच रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे ने। मन उहनां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगदी नहीं, भुख प्यास तन नूं लगदी है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं, तो तन दी कोई भुख प्यास नहीं, तन दी कोई लोड़ नहीं,
और सूक्ष्म शरीर भी लौड़ते हैं, कथा कीर्तन जप तप जाते उत्थे ही रहते हैं। एक दूसरे ढांचे भी आते ने, बहुत मलीन, बड़ा कसाई, बड़ा दुष्ट, महान ठग, बड़ा कातल, यही करता रहा है। इहदी भी शरीर की मौत हो जाए, अगला जन्म छेती नहीं आता, भटकदा है। इन्हों ही भूत प्रेत कहते ने, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा, शराबखानिया च, वैश्यालिया च, होर गलाजत भरिया जगह दे च ये रूहां होंदियां। छोटी जी लड़ाई वड्डी लड़ाई का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना है भूत प्रेत है कि नहीं। छोटा जिहा कुकरम वड्डे कुकरम का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना भूतां ने मदद कर दिती है। ये भी मर्ज करते हैं। छोटा जिहा नेक कम जे वड्डे कम दे प्रगट हो गया तो समझ लेना देव रूहां ने कुछ मदद की थी। दूर क्यों जाओ, कबीर किथे गंगा दे तट ते बैठे 25 साधुआं नू कह आए, शिवरात्रि दा दिन सी, अज दोपहर नू भोजन साडे घर करना, सवेरे अमृत मिले, कह दिता। उन्हां 25 साधुआं ने 2-4 साधु जिहड़े उन्हां दे कोई होर मित्र सन बाहरों आए उन्हां नू कहा, गल फैल गई सारे बनारस दे च, पहुंच गए 700-800 साधु। इन्नी भीड़ वेख के कबीर ते निकल गया। 25-30 आदमियों लई अन्न बनाया सी, इतना ही है, होर अचानक लिया सके बना सके इतनी बिसात नहीं सी, इतने को माया नहीं सी, की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे तो संभाल, मैनू नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामा पै गई हूं, सोचता जावा घर, पता नहीं उन्हें पंजियां नू भी मिलिया कि नहीं, जिन्हां नू मैं कहा सी। बेइज्जती खूब होई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना कई ने। ज्यों आया ते घर दे बार पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते दो सज्जन लंघदे हुए कहिंदे ने, धन कबीर धन कबीर, ऐसा लंगर, सारियां नूं दक्षिणा भी दित्तियां, धोतियां भी दित्तियां, दो दो मोरां सोने दियां भी दित्तियां, धन कबीर कहिंदे निकल गए। घर पहुंचे, प्रसन्न चित मां मिली, प्रसन्त चित लोई मिली पत्नी, ऐ सब कुछ देख के जो कबीर ने कहा, ना हम कर किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, मेरी तौफीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। श्लोक है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर। पता नहीं रब ने की कर छड़े, कही जाते ने धन कबीर धन कबीर धन कबीर, अपनी ते बिसात नहीं सी। एक दफा नेक इरादा बना लईए, बहुत नेक रूहां मदद करन नूं तैयार ने, एक दफा भैड़ा इरादा बना लईए, बहुत सारे भूत प्रेत नाल लगन नूं तैयार ने। ते अक्सर भूत प्रेतां दा वासा किथे हुंदा है, वी कबीर कोल सुन लो, जे घर साधन सेविए हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे ते नमाए। भगत कबीर, खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये मुक्त लोग जो पूर्ण मुक्त ने, ब्रह्म विच लीन हो चुके ने, ते फिर जगत विच आ जांदे ने, अवतार कहलांदे ने, गुरु कहलांदे ने, पैगंबर करांदे ने, मनुखता दे पहली श्रेणी इन्हां दी है। इह कदी कदाई हजारां साल बाद ही आउंदे ने, इस वास्ते इकबाल ने अपने अनुभव दे आधार ते कह दिता, हजारों साल नरगिस
अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आउंदा जिदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए ते दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दियां आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने। गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुलां दा जन्म कदी कदाई, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस हो के जन्म नहीं लैंदे। हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया। शरीर दे होंदे ये सब कुछ मर गए, असीं ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म विच। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस हो के आ जांदे, तरस खा जांदे। जगत नूं जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दियां ठोकरां खांदियां देख के तरस खा के फिर आ जांदे ने। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उहनां नूं, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नूं दस तनां दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिया। संत बनाना है, उसे संत नूं सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नूं पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल की अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नूं प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नूं कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नूं कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए होवेगी। साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आनगे के नहीं आनगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद दे च ने। गुरु ग्रंथ साहिब दे च गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जांदा है ते उहदे अंदरों भगवान दा गीत संगीत निकलदा है, भागवत गीता निकलदी है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करदे हैं, गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। इह जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने दो हिस्सियां च वंडिया। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे, और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहे। भावें चौक दे च बैठ के जुतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़िया नूं रंगदे ने, छिमदे ने नाम दे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान आउंदा।
वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते ने। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहती है, जैसे खिड़िया होया फुल उदी खामोशी भी महक वंडदी रहती, सुगंध वंडदी रहती। चूंकि इस तरह के पुरुष बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बनते। यह भी मैं करते ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे अर्ज कीती है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सिआं च वंडे ना वंडिआ है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी चाहुंदे आ। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मंदा भी है मन इनकारी भी है। मन ओही कुछ मंदा जो मन दे अनुकूल है, मन उसनु इनकार करता है जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। ये श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मज

0: मरेगी, मनुखता मरेगी, ये जीवेगा ते सही जीवदा ते रहेगा, पशुआं दी तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिले तन मरेगा वाह कई मरेगा, गुरबाणी का जाप ना कीता मनुखता मर जाएगी, आखां जीवां बिसरे मर मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उस नूं चंबणगे, परमेश्वर ते पुन्या व्यापन सभे रो। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी, इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इते कोई ऐसा विषय ही नहीं है। पंजवी श्रेणी जिन्होंने भूल के कदी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कदी ख्याल भी नहीं आया, ये पंज श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी केरी क्लास दे विद्यार्थी, किस क्लास दे, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है, दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दे की चलता रहिंदा, मैनू की पता थोड़े मन दे की चलता रहिंदा, तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बन, अपना फैसला आप कर, साहब रहमत करन। असी इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों नूं अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव नूं मना के, जिस तरह भाई गोंदे ते बख्शिशां होईयां, ए गुरु हर राय साहब अज साडियां भी झोलियां भरना तेरे दर तो खाली ना जाए, श्रद्धा नाल भर जाए साडी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साडी झोली, जो शक शुबे अंदर ने हे धन गुरु हर राय साहब इस नूं कढो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारा मैं थोड़े सामने आज शाम को रखांगा, ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई, भगत मुक्त हो जाता है एक दिन, तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है, कि जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी, और ये भटकेगा, अहंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा, हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए, मुड़ मुड़ जोनिया दे भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभु की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, असी जीवन मुक्त बन के जीवन दा लाहा खट सकीए, जीवन नु आनंदित बना सकीए, संसार दे आण दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान, सारे दा बार बार धन्यवाद, बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जैसो साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत, पेशेंस।